अस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तोडुलय सेवियन् तूपन् मदिशोणि काडुलय सुलनै पोडि पोसी